0: हजारों दिलों की धड़कन, आप सुन रहे हैं रेडियो हम वतन।
1: बाबे फूके दियां फूकां ते पहला प्रोग्राम सामेन नाजरीन ले